जन नानक जल बिन मरिया जियो। माज महला चौथा। हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई। मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी। हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे। गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया। पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी। नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा। हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सत पुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी।

तिसके हों वारियां। मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुरु विट्टों कुमाइया जियो। जै जै देखा तै तै स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी। गुर पूरे हर नाल दिखा लिया, हों सतगुरु विट्टों सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई, किसे दीर लाइया। गुर प्रसादी इक नदरी आया, हों सतगुरु विट्टों बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुर सिखा कै मन प्यारी पानी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो। सत चौपदे महले चौथे के, माज महला पंजवा चौपदे घर पहला। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिल्प करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सह तुन बाणी। चिर होआ देखे सारंग पानी, तन सो देश जहां तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हों कोली हों कोल कुमाई। गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता। हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ राग माज महला पंजवा। सारुत सुहावी जित तुद समाली, सो कम सुहेला जो तेरी काली। सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा, सबना के दाता राजियो। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ निध तेरे अखुट पंडारा। जिस तू दे सो त्रिपत अघावे, सोई भगत तुम्हारा जियो। सबको आसे तेरी बैठा, कट कट अंतर तू है उठा। सबे सांझी वाल सदाइन, तू किसे न दिसे बहरा जियो। तू आपे गुरमुख मुक्त कराए, तू आपे मनमुख जन्म पवाए। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा। अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विद तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु।

जित मैं सतगुरु मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूरत चसे पल कड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उद्दम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत परम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप वखाणी गुर कहया सब एको एको अवर न कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाउ नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पै वस्त इक मांगो करो विनंती मान त्यागो वार वार जाई लखवरिया।

अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्शन तेरे पवन पुनीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख विदाते, खुद जेवड़ अवरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसरना ही एवड़ दाते, कर कृपा भगतन संग राते। दिन सरैन ज्यों तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किस दिया पलिया जाई। अनद विनोद चोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो। जिस दा दिता सब किस लेना, शक्ति अमृत भोजन खाना। सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, कोट नानक गुरु चरणा जियो। माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे। तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक पी खीर अगावे, ज्यों निर्धन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया। सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख अगले देखे। मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाए डुलाना। तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पय कनेरे। नाम निधाना गुरुमुख पाये, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे। जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन पेखत पय पुनीता। सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना। गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जहाँ को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए। ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा,
प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल छिया। आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेटत हो गई बलाए। सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने,

मन पीवै सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो, जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सू का हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो, जल तरंग ज्यों जलै समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होई है जौला जियो, माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो, तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो, सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो, तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो, माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो, तू सूत मणिए भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ तोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो, तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद समालिए जियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो, माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो, से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाना जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो, दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाना जियो, माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर परे सर सुबर, बिरथा कोई न जाए जियो, दया तारी तिन सिरजन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो, वन त्रिण त्रिभवन की तुन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसे अरादे, मन की आस पुजाए जियो, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सब नी थाई, ताबो के आकारा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओत तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाना तित तित लाए, सब किच कीता तेरा होवे, नाही किच असाड़ा जियो, नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुर पूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो, माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याग

प्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी। खुद ही मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओत गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो। तुमरी कृपा ते हुए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पै निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वर्षण लागे मेहा। साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल शांत सहज सुख पाया। ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किछ बहुतो बहुत उपाया। कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा। जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म मरण पै काटे मोहा। बिनते सोग संतापे जियो, सास सास नानक साला है। सिमरत नाम काटे सब पाहे, पूरन आस करी खिन पीतर। हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम अपारे। गावत सुनत सदे ही मुक्ते, सो त्याये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल विख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे। सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सबस को दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाये, सब पौ बिन से हर हर त्याये। जिन से व्या सो पार ग्रामी, कारज सगले थिए जियो। आए पया तेरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों लह मिलाई। कर कृपा प्रभ भक्ति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवा, पय कृपाल गोविंद गोसाई। मेघ वर्ष है सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला। ठाड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत प्रतपारे। ज्यो बार माता सम्मारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी। देत सगल आहारे जियो, जल थल पूर रहा मेरवाना। सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सत्य सदा ते आई। जे खिन में सगल उधारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे। उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल। प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चुबारे। जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले। खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए। दुलब देख होई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा, चरण ठाकुर के हृदय समाने। कल कलेश सब दूर पयाने, सांत सुख सहज तुन उपजी। साधु संग निवासा जियो, लागी प्रीत ना टूटे मूले। हर अंतर बार रहा पर पूरे, सिमर सिमर सिमर गुण गावा। काटी जम की फाता जियो, अमृत वर्ष है अनहद बाणी। मन तन अंतर सांत समाणी, त्रिपत अघाए रहे जन तेरे। सतगुर किया दिलासा जियो, जिसका साथ तिसते फल पाया। कर कृपा प्रभ संग मिलाया, आवन जान रहे वट पागी। नानक पूरन आसा जियो, माज महला पंजवा। मियो पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया। दया कलेस पया सुख साचा, हर हर नाम समाली जियो।
जिसके से तिन ही प्रपारे पार ब्रह्म प्रपैर खवारे सुनी बिनंती ठाकुर मेरे पूरन होई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल मैयल सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया।

सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये। तिस दिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे। गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंकर। सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वर्ते मेरा। सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने। सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे। अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा।

सत मंदिर जित सच की आई है, सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे सत शब्द मन मानो जियो। सत सालाहन बड़ पादमी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे हैं सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याग।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रभु साथे, तै पाओ परम खोया गुरु पूरे, देखा सब नी जाई जियो। प्रभु समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नान।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत दिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद।

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंड कवल जिस होए पर।

जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवे, बिन स्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेख न मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े फिर जातो नाही, झूठ विछुनी रोवे ताही, अवगण मुठी महल न पाए, अवगण गुण बख्शावणिया।

सेवा सुरत शब्द चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया, गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साई सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अंदिन सदा रहे रंग राता, दर्श कैसो जी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हों मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हों मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तू दैताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई, नानक नाम त्याए सदा तू, जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख हो वे तोई बूझे, गुण कह गुणी समावणिया। हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया, जो सच लागे से अंदन जागे, दर्श कै शोभा पावणिया। रहाओ आप सुने ते आपे वेखे, जिसनो नजर करे सोई जन लेखे, आपे लाए ले सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए।

जिन सतगुरु मिले आसे बड़ पागे पूरे कर्म मिलावणिया। तेयड़े तन अंगदिन सुती कंत दी सारी अवगण मुती अंगदिन सदा फिरे बिल लांदी बिन फिर नींद न पावणिया। तेयड़े सुखदाता जाता हो मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावे सत सिगार बनावणिया। लख चौरासी जी उपाय जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही फुन दूए तीए आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया। हो वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया गुरमति मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला ते आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म बिदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वड्याई हर कै नाम समावणिया। माया मोह हर चेते नाही जमपुर बद्दा दुख सहाई अन्ना बोला किछ नजर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शे दे वड्याई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम ते आवणिया। अंग दिन राते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाने हर गुण

काल न चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावने आ हौ वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने आ सतगुर सेव सत चित लाया गुरमती सहज समावने आ रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए

सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते एथे ओथे नाम समावनिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावनिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावनिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावनिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावनिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावनिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावनिया हो वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावनिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावनिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अब अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावनिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए।

सचो सच वरतै सबनी थाई सचे सच समावणिया रे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर ना कोई तुद है जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावणिया तुद जेवड मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवार नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यो लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मोहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक है आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखें कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर कै शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पलर त्यागे मनमुख अंधा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुखने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए अंदिन सदा रहे पै अंदर कै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणिया सिमरत शास्त्र वेद वखाणे परमे पूला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणिया आप करे किस आखे कोई आखन जाइए जे पूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया गुर कृपा से हर निरपौ त्याया बिख पौजल शब्द करावणिया रहाओ मनमुख मुग्ध करें चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जाती कर अवगण पछो तावणिया मनमुख अंधे किछु न सूजे मरण लिखाए आए नहीं बूझे मनमुख कर्म करे नहीं

सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाइए मोख द्वार, अंधन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावनिया, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावनिया, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हौ बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावनिया, सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैस सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावनिया, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो में जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावनिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जियो सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावनिया, हौ वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावनिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावनिया, रहाओ सतगुर सेवी सबद सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावनिया, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावनिया, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया, बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया, गुरमुख हो वै सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच वापार करावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया, पाओ पोजन सतगुरु तुठे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया, सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए कितों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे, जमदर चोटा खावणिया, शब्द है साफ जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द वखाणे, सच्चे सेव सदा सुख पाइन, नौनिद नाम मन वसावणिया, सो थान सुहाया, जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर सालाहे साचा, निर्मल नाद वजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर तमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईए, सहजे मन वसावणिया, रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का, पूरे पाग मिलावणिया, एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु जय पाए,
तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरे हर स्यों चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागे सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे होमे ममता सबदे खोवे अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए पूरे गुरते नाम निध पाए सच्चे नाम सदा मन सच्चा सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो गुर सबदी हर अंकर पछाणो नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा ऐसे साचे सो आगे साचे मन सच्चा सच्चे शब्द राचे सच्चा सेवे सच कमावे सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया सच्चे सेवे सच समावे सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे दूजे पाए माया मन परमावे माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुर मिले ता तत पाए हर का नाम मन वसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे गुर का शब्द रखे उर्धारे सच रते सदा बैरागी होमे मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुर शब्द रंगाए हर रंग चढ़िया अथ अपारा हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे गुरमुख जात पत सब आपे नानक गुरमुख नाम ते आए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा उत्पत परलो सब दे होवे सब दे ही फिर ओपत होवे गुरमुख वरते सब आपे सच्चा गुरमुख उपाय समावणिया। हों वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया गुरते सांत भगत करे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पानी गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करते एक खेल रचाया ताया शरीर है विच सब किछ पाया शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया। सच्चा साओ सच्चे वणजारे सच वणजै गुर हेत अपारे सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाए मनमुख पूले लोक सवाए बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणन जै गुर शब्द प्यारे आप करें सगले कुल तारे आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावणिया। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मनमुख अंधे फिरे बेताले जिथे वस होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावणिया। आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावणिया। माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया। हौ वारी जियो वारी आप निवारणिया आप गवाए ता हर पाए हर स्यों सह समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन पागा गुर पाईए नाही शब्द मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रह संसारे गुर के तकिए नाम अधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया।
मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एह जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए तेही वरते, वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाने, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावणिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर, जिस देवे सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मंतन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, त्यों मन पूला जांदा तेरे, अमृत बाणी त्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाणी विच अमृत वरसे, तू पाणे अमृत पियावणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख लै जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक क्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सदना उपर नदर प्रब तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मनमुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम न लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हौ वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया।

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारन तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यों सुन्ने कर पाओ, हलत

कूड़ लिखे तै कूड़ कमावे है, जल जावे कूड़ चितलावण्या। गुरुमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावण्या। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावण्या। तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावण्या। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते

दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डोबे, कूर बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरुमुख देखे, पाले पगत जाहों में सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर सब्दी आप जावण्या। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावण्या, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावण्या। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावण्या। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैठ सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावण्या। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौ में मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावण्या। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावण्या, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावण्या। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप दवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे पवित करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अन दिन रोगी बिस्ता के कीड़े, बिस्ता में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावण्या। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावण्या, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते, गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया, आपे मो

सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे, आपे आप सुनावण्या, आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावण्या, आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावण्या, आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालण्या, माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

दिखतावे दिखता कीड़ा दिखने राता दिखी माए पचावण्या। हो हों करे कह आप जनाए बहु कर्म करे किस खाए न पाए तुझते बाहर किछु न होवे बसे सबल सुहावण्या। उपजे पचे हर बूजे नाही अंदिन दूजे पाए फिराही मन मुख जन्म गया है बिरता अंत गया पछतावण्या। फिर परदेश सिगार बनाए मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए हल्क न शोभा पलत न टोई बिरथा जन्म गवावण्या। हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता अंधिन।

कर कृपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा, मन मुख पड़े पंगत कहावे, दूजे पाए महा दुख पावे, बिख्या माते किछ सूजे नाही, फिर जूनी आवणिया। हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मिलावणिया, गुर सेवा से हर मन वस्या, हर रस सहज पियावणिया। रहाओ वेद पड़े हर रस नहीं आया, वाद बखाने मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कचिए सबद सुहावे, गुरमती मन सच्चो पावे, सच्चो सच रवे दिन राती, पिहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सच्चो पावे, आपे दे ना पछो तावे, गुर के शब्द सदा सच जाता, मेरे सच्चे सुख पावणिया। पूर कुसत तिना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अंदिन जागे, निर्मल नाम वसे पट पीपर, ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पने हर पत ना जाने, मूलों फुले गुर शब्द ना पछाने, मोह व्यापे किछ सूजे नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिविद माया, मन मुख ना बूझे दूजे पाया, त्रै गुण पड़े हर एक ना जाने, बिन बूझे दुख पावणिया। जा किस पावे ता आप मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए, नानक नावे की

तो पंडित होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसै कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे।

चित लाए हर दर मैली शोभा पावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया सिमरत सास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलक पलक दोवे गवाए सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले पिरके सहज रह रंग राती शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया दूजा पाव गुर शब्द जलाया एको रव रहा कत अंतर मिल सत संगत हर गुण गावण्या। सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मन मुख नाम चित ना आवे बिन नावे बहुत दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पछाने नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थाप उथाप

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पवती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाद लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर।

सो बत्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आवन जावन टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख नेह कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करें सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार।

बेचारे कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्व में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नदर निहाली

तू साहिब शरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का

दे प्रभ अवगाहिया ए रस भोगन पातशाहिया मंदा मूल न उपजो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

0: सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वरतदा जल थल महियल पूरे पाप विनाशन सेवया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे।
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिली है साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंस ना प्रगटे पत नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम कब स्वामी कंक विहूनिया।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए भी गुच्ची है गल पई सज

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर चरण

मम संग रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार।

जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार, सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। पादोए परम कुलानिया दूजे लगदा हेत, लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत। छंद खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत, हाथ मरोड़े।

आखर तीरथ सगल पुन जी दया परवान, जिसनो दे दया कर सोई पुरख सुजान।

हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन। हर फिर दिन चैन न पाये खोज दिते सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन। कर कृपा प्रभ राख लियो होर ना ही करन करेन हर

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसर सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन

खेड पंजवें खान पीन की तात छेवें कामना पुछे जात सतवें संज किया परवास अठवें क्रोध हुआ तन नाथ।

का कवलहार पौरी, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग परंग उपार्जना बहु गोविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

ते साधु जा आख वखाणी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे तंदे लाया। मोठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खो।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुछ पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत सुहावनी जिन हर से की चित लाया श्लोक महला दूजा।

कपड़ पहरा तोवा सदाकार बड़ा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाले वक्त पराई अपनी कर जाने हो मैं विच दुख काले

खेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। पूर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पर नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अनदिन हर हर नाम के आए, ओ आप सुता कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गृही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाए का दिल हच्छे मुख ले हो, अवर दिवा जे

पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा विन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच सब

क्या सोए, क्या मेवा, क्या घ्यो, गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पवड़ी जाति दे क्या हाथ, सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर्दी बानिए, सुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आ

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विष तय जय खाई है, सच्चा सबल सलाह सच समाई है।

चाहता सबको सच्चा कूड़ा कोई न कोई आसन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेव निसंग परम चुकाई है सतगुर आखे कार सो कार कमाई है सतगुर हुए दयाल ता नाम ते आई है लाह भगत सो सार गुरमुख पाई है मन मुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दे दर जाए सच कमाई है सच्चे अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला। कल का तीरा जे का साई कर्म पंकर उड़िया पूर अमाव सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हो पाल विकुन्नी होई अधेरे राहो न कोई विच हो मैं कर दुख रोई कहो नानक किन विदगत हो।

मोया जीव दिया गत होवे जा सिर पाये पानी नानक सिर खुथे सैतानी इना गल न पानी वुठे हुए हुए बिलावले जिया जुगत समानी वुठे अन कमाद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहु चरे नित सुरही सातन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पे कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वध्याई नानक जे सिर खुते।

नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी। तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया, तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया। सच जे मंगे दान से तु दे देहा, सच तेरा फुरमान।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ तिनको।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ तै तन अगन पखे पै नाल, तै पाओ कड़िए सब दुसवार। तै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्यानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बो

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, तिस विच भूख बहुत ने।

देही माटी बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने। हाँ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

पीठ हुकम संजोगी गण दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाव तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार, रे मन मेरे परम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर

नानक गुरमत सहज समाओ, नानक गुरमत सहज समाओ। गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए। गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे। कमल विगास मन हर प्रभु।

आगे होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवट तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार तोत नाही।

ज्यों पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सब शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अतप कहाया अपियो पियाया, हम कह विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

ते हर जान राम भगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत पास्त पंडित भुक्सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया आशा माए निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहो संसारो लब लोभ मुच।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करें चोरी बुरियारी।

कर्म कमाया, कर चोरी में जा किछ लिया, तामन पल्ला पाया, हलत न सोबा पलत न टोई, एला जन्म गवाया, हौ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साहो हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जारे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौरी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना, आगे जम बल बिख।

लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे, गुरमुख मिले वडाई रे। जो तिनकी आसोई हुआ, कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने, जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किछ पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला, कब की माई बाप कब चेरा। किदू था वो हम आए,

तरे हंस मौ चाहे आ जाए, हंस को चाहन जो गए से आए अनस गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग छु होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाए।

मेरा सौ मिले वार वार हों जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हम मिलोंगी बाप पार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सो।

पारावार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन संराता नाम सुहावे, रहाओ एक गावे एक पगत करे, नाम न पावे बिन असने, सच्ची पगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उर्धार। पगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए पगत न होए, शब्द मरे पगत पाए जन सोए। पगत वछल पगत कराए सोए, सच्ची पगत विच्चों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बक्से नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे देवड़ियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत मैगल मितबारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाद सादे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी द्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हो मैं मार गुर शब्द।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ, रहाओ तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को

राते हर वे परवाओ सच्चे मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पवजल उतरो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए ते जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप पुला के प्रत आप पुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत विरला बूजे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौरी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सदा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजै गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगुर सेवे से

सतगुर सेवे सदा मन दाता हो मैं मार कमल प्रगासा अनहद वाजे निज करवासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपे हर सारंग पानी नानक नाम रते ने केवल निर्वाणी।

पुरुष होए के क्या ओए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत तत क्यों मिलिया उमरप जन्म न आही। गौरी बैरागण महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुरु का शब्द न कीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सोगावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेव कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय पिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौरी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाई संत जनो जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गपकीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, पर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बने आई।

पहला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए ते हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा फिर कर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारंग प्रीत बसे जल पारा नरपत प्रीत।

जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौरी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस तू।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेर ना आया और वणज करें व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदब मेरा सखा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभु

दाता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह लै बोले गुण विहून नाम जपिया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन तो पानी अन्न थाना।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौरी बैरागन महला चौथा। ज्यों जननी सुत जन पालती राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु।

मरा ताप सिरत साप सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति औ

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे।

गुरमुख रंग पाया अत गूढ़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर पद की हौ बोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली, रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली, हर हर निकट वसे सब जगते, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे, सिर वेचियो गुरु कह मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदिन हर गुण गावे, मिल सतगुर गुर वे चोली, गौरी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामे नाम समाते, रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड़ अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर के।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने राव जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूड दीवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोय कचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगते मत गुरमत नाम

नसीए हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए सतगुर की शरणाई पज को मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसिए गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसिए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लैलाहा हर मन हसिए हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न फिटिए।

खा छुटी है जन नानक हर प्रभ पूरे किए छिन मासा तोल न कटी है गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन सन लोच कनेरी राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल किरपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते।

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुरु दाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सबागे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट कट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिव लागे हौ मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीस ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

जाया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आ

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा वद पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संत।

करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोल।

मन अनदिन अनदृश जियो, हर पायणा वद पा गई मेरे गोविंदा, नित लैला हा मन हस जियो। हर आप उपाय हर आपे वेखे, हर आपे कार लाया जियो। इक खावे बस तोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे तख्त बहे नित सुखिए, इक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौरी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो। हर हर नाम परदास।

मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मिलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हूँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर सबदी पाए हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम।

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुंगवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरु मेले संत हर सुगर सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई।

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमिये प्रम किसका होई, जा जल थल मैयल रव्या सोई, गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, ताकू सुख सो होए अचिंता, ओह सब किछ जाने जो वर्तनता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन पा...

आप कर उपाया लख चौरासी जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत पर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्दे पर।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

सदा अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस कहते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे

गुरका शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूफा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो।

हर ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम जपत जन तारियो, अगन सागर गुर पार उतारियो, रहाओ कर कीर्तन।

सब जाए, गुरपुरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आंख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पंजवा अनेक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहा जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का

मां जिस आप दीवावे हर हर नाम जाके हृदय बसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनक रूप देख नहीं।

तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई

जो हलाहल सो पीवे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संग के नाही नेर लख चौरासी परमता फेर एक जाल पहाए पंखी रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पा।

तत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे,

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर्ष सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि कृपा।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत इह जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जे तू

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन करे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक नाम लया, गौरी ग्वारे री महला पंजवा, साध संग जपियो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, तज अभिमान पय निर्वैर, आप पैर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी, जब के सुनिया हर जस्तानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखना

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पावे।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जन सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

माया मगन ना सचुए मोह उदरे आप तरे संसार राम नाम जप के कंकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जटे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संजम प्रिय आज्ञा माने इस नारी को दुख ना जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारेरी महला पन्नवा हम तनवंत पा

मेरे मन पया निदाना, रतन लाल जाता कछु न मोल, परे भंडार अकूट अतोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तो ना आवे वध दो जाए, कहो नानक जिस मस्त

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चल।

रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपतायो जाका तहे दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का

गौरी महला पंजवा आपन तन नहीं जाको गरबा राज मिलख नहीं आपन दरबा आपन नहीं काको लपटायो आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप ना माई सोईना रूपा सुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया इसका सब किस जिसका।

नाही हर्षा प्रीतम करमन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा।

इससे कर्तव्य कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ नीत हमारा वे परवाह गुर कृपा के मोहे असनाहा नीत हमारा अंतर जामी समरथ पुरुष पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, का की माई का को बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

के अघकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचार अमृत नाम हृदय ले संचार कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जाका मन राता जिसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करन करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल अराद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नस्या करन हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरु पूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

आए गुर का शब्द तेरे संग सहाई दयाल पै सगले जी पाई गुर पूरे जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजवा अनुग्रसा खाए जैसे तोर मोह की जेवरी बांधियो चोर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ अनेक बस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माह डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का दिन सिया खाओ, सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुमरो प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ, रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रत्ना उचरे हर हरी, सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग, कहो नानक पला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उधार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्टि सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पावे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरे नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुखने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे।

पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौरी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

महापदार्थ अमृत रस चाख दिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नगर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम ते आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देख।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभु बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जाता मन लागा दुख दर्द प्रमता।

सांस आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास साध संग खाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किलबित सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौड़ी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत शोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सुमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माहे बताई, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा, खादा पहनदा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बदे विकार लिखे बहु कादर, नानक उदर कृपा सुसागर, पार ब्रह्म तेरी शरणाए, बंधन काट करे हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद जीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए, रहाओ अपने स्वाय हृदय।

काम अनित बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कहो नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह होए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

नानक दरगे पाए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राखियो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर बिसरिय दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ननेरे सोवड पागी निचल खान जह जपिय प्रभ केवल नाम जह जाय तह नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट

तोल महारस हर अमृत की जय रहाओ निर्मल उद्दक गोविंद का नाम मज्जन करत पूरन सब काम संत संगते गोष्ट होए।

आज जुबाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वदताप, इन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राख।

साज तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल ना उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आइए गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांस पई

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उभरे जनमीत, मन बच क्रम।

का हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अमदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लगदा।

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभु कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद

पाप जैसे माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभु पत गवाई, नानक हर गुण निरभौ गाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नामा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत मिला।

मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोहि सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरुष रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गौरी महला पंजवा, निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो।

सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जाप बहोरा, आनंद सुख पेत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते।

कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संती मंत दियो मोह निरपो गुरु का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निमानो एक महल तू आपे

जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपर

कदम सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगे अतोले। वरन नासा को तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल, जब के हूँ मैं मारी, जन मरण को

उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आशा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला, भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिसे सब किछ जुग में तातिया, नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौरी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुर के, मोको सतगुर शब्द बुझायो।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किह तंते गुर शब्द दीपक परिदासा प्रम की जाली काकी काकी जाको साध संगत विश्वासा पारी ले पाव जले पारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूरन

प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी।

की जय। हर नाम मेरा मन जाके, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल त्राके, गौरी महला पंजवा, सह समायो देव, मोको सतगुरु।

मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

जहाँ वहाँ सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ माँ कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दाताए कर कृपा अपनो।

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

लक्ष चौरासी जोल फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जने दुख ना व्यापिये जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को प्रभु।

तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया।

गौरी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभु के गुण गावा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसै जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिया रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाये, जो हो दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद पाये, मेरे मन नाम ले, जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाये।

भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अंत बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं गाया, मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

आवै दुख न पंथ पयान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है पाल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीरथ किए बिच हो में बदे विकार नरक सुरग दोए पुंज

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग गौड़ी माला।

किया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे करो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, टोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए पर्दा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पहे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला मेला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूजत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

जिन प्रभत्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

माया मोहड़िया देव जार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

कृत सो जीवन सोए अंचल गह के साधका तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना क्यों कर हर के चरण निदान नानक जाच

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन सिपागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हों गुरुमुख जाना, गौड़ी महला नामा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

तो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों चूठो इहु जग देख ताक उठतावे। फुगत मुकत का

जन नानक हर पै दयाला तो सब विद बन आए गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकट पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता स्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता स्यों निहो न लावे, नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परस जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कह लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कट से रोरे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर त्यो ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर त्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत है समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तस कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इत थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभु सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी दिन गुरु पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे दिन गुरु अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाख दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खाता हरनाखस ले नखो विदाता दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम विदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे।

रंगमत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे। पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई। हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है। दुर्मत अगन जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है। प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना। तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी। क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए। गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे। काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई। पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा। बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा। ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता। गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना देखे पावे। वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख। रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम। अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हौ मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हौ हौ करत नहीं सच पाई है, हौ मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवे, हौ मैं खपे जन्म मर आवे। हौ मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन

फूल पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न

ओ गुरुमुख जापे ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा वडे कहावे हो मैं तन पीरा। काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जेवा अरनैनी कानी काल सुने बिख बैनी। बिन शब्दे मूठे दिन रैनी। फिर दे साच वसे हर नाए। काल न जो है सके गुण गाए। नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुकम रजाई। रहे अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैठे काल न जो है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है। निज कर बैठ सहज कर रही है। हर रस माते इहो सुख कही है। गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत विरोले। सतगुर देखिया दीखिया लीनी। मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी। गत मित्र पाई आत्म चीनी। ओजन नाम निरंजन सार। परम हंस सच ज्योत अपार। जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन से मन मानिया क्यूँकी अंग प्रमणी। इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर न पारिया। साच महल गुर अलख लखाया। नेचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया। जिनके मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मलख होई। गौड़ी महला पहला राम नाम चित्रा पै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा। चित कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार। से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई। तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया में एको रवे। मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए। हों में मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्द की संग क्यों जाने। गुरमुख संग मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए। तब होए दयाल नानक जन करिए। हम पापी निर्गुण को गुण करिए। तब होए दयाल नानक जन करिए। सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाव परने पूले आवो जाओ मन मुख सूतक कवे न जाए जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अग्न पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किसाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सातक सिमरत सोध देखो कोए विण नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरमुख उतरत पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी मैला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हृदय उर्धारा गुरमुख तोबा सात द्वारा पंडित हर पर तजो विकारा गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म कर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतुराई जो किछ कमावे सो थाए न पाई आवे जावे खौर न काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहन सियाना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अन दिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल ने

समावे। हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही, तिनको सब निवे अनदिन पूज कराही। सहजे गुण रवे साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजय हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए।

तो साथ रहा लिवलाए, हूं मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंजन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वसिया सच सोए, गुरमुख मन दे दिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंजन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास।

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पहे पचन इहो जग परम पुलाया मोह टगोली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस।

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल। गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुरु पाल। सत्संगत लग हर त्याय हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पागिया हर एक नजर निहाल। आप छड़ाए छुट्टी है सतगुरु चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल। गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल। हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल। गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल। गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल। हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल। वड पागी गुर

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनों बांधियो मोहा आवे जाए सा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किच सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

तास जपत पाव अपदा जाए, तावत मनुआ आवे खाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए। सहजे होता

जाके सहज मन पयानंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रवसस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे। गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ।

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

नहीं इस मारी बिन थाए न परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म न मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान न होई इस मारी बिन झूठ न तोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पै किरपाल किरपा निज इस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म विचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता ने चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा रे मन मेरे तू हर स्यों जोर काज तुहारे नाही होर रहाओ वडे वडे जो दुनियादार काहू काज नाही गावार हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन में उदरे कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते विद जानी मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत हर अविनाशी तुम

जाके काम होवे तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके दफ्तर पूछे ना लेखा, ताकि चाकरी करो विशेखा, जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा तिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, कल कलेश पै परम दुख लाथा। कहो नानक मेरा गुर समराथा, गौड़ी मैला पंजवा। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो। रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जम पुरबादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा। आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले। रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रख।

पहला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत न पारिया से होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया मोहन ला अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कथारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमोल अपारिया।

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहे हो कोट मदे किने गुरमुख लहे हो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहे हो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवां रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौं संचो हौं खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौं सूरा प्रधान हौं को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुर

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन।

रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे, तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया, बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मिले।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम

सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है। जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए। नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए। सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ। हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो। नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिलिए माए, पासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन विद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमति रंग लाए, तेहो शरीर पूर कुसत परिया, गलताई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर्धारे, अंतर उर्धारे मिली है प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो, प्रीत मत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरुमुख कार्य सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंग दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाए, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यों मरिए, किन में दाम नाम किल विख काटे, पै पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पै मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हो मैं पाप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरुमुख शब्द सुहावे, अंदिन

गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना सब सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लीलाए। नामे उपजे नामे दिनसे, नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाए, आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो, तन छोड़ परदेश सिधाए। दूजे किने सुख न पायो, पिया जियो बिख्या लोग लुवाए। बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही, छिनछि दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके, जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो, शब्द मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चित लाए। जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी तिसमी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पिया ता शीश सो कान गुर पे संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन अंध भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाओ गवाया। अनहत वाजे वजह कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

सोन द्वार जियो संत परमशाला तरमसाल अपार दयाल ठाकुर सदा कीर्तन गावे जो साध संत एकत्र हो गए तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया।

का खुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल पारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र नीत पाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत ना

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला, दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नाशे, जी जाके प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूरन काला, बिनवंत नान।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

ये मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रमुख होयो सांख सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

रहत आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सबता कह ज्ञानी तत् गुरुमुख विचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक रात

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुखदेव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै

कै रस राते अहं बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो।

एकै आप अवर न हो, होनहार होत सद आया, ओ आपा अंत ना काहू पाया। कीक हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर वस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस

ओ गमिये जास रसन हर हर जस पनिये आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मात।

खट शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

उद्यान परमत पछताप है आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो श्लोक खास खर्च।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनब स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देका बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरधि कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आन न कस्तो कोए, आप जुगा दी हुन होवत नानक एक सोए पौड़ी। कद्दा तालो मने ए बिन हर दूसर नाहे, ने होवा ने होवना जत कत ओही समाहे। पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुने चरना। काल काल अनिक पछतावे,

चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

चूरन मिटे तुम्हारो, राम नाम स्यों कर ब्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद,

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ज्ञा के हाथ।

पावन बिन नामे सुख नाहे, तरह जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

कौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पचित रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पात साओ छत्र सिर।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते पर।

दुख सुख हुआ के समत विचारा, नरक सुरग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो। याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रगट।

मैं खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहज पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हों छुटके होए आनंद ते, हों नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

पाव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुरु दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना। अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

पंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है,

प्रभु के सिमरन दूख जंग नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए नानक का कहला गुरु पाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि सनाए, प्रभु जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से स्वर्ग के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभो न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन नेचर आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु नया, नानक तिन जन सर नहीं पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा।

हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाय जय मां प्यान दूत दम गले ते केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उदारी अनक पुने चरण तर्क नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नाम पावो सुख घनेरे सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोड़ी बंदना करे हर का नाम जपत निस्तर है अनक माया रंग सिखना बुझावे हर का नाम जपत आभावे जे मार के हो जाति के लाते हर नाम संग होत सोएला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार कराही अनक बिगन जह आए संगारे हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हों मैला मल कभू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नाम पाये साध के संग जे मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पेंदे महा अंग गुबारा हर का नाम संग जी

ऊपर छाम, जहाँ त्रिखानन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर दस पर संत दिन रात, हर हर औसत साध कमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भूत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत तब करे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत पछवाए वियोग, जन वाता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप सब दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का पगत प्रकट नहीं छपे, हर की पगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात एव हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप दीर्घ सब नसे, संत का संग वड भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये, नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्प तंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खप शास्त्र स्मृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनेक प्रकार की बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव, महा उदास कपि सरथी वै, अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अच्छादन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मेल न जावे, हर के नाम संस

अनक जतन कर सुनना झापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपार दर गैने सिजाए छूटत ना ही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अगर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जगत दुख जाए नानक बोले सह सुवाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक तों कै बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जा का मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्टि साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को

कर जामे। अपनी गत मिट जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते। तुमरी उस्तक तुमते होए, नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया।

कुमार है बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन पोधन सुख सूद बिर पया ऊपर साख सैन मुख पियाओ बैठ कौ देन यो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जा की सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहारा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत

हाँ उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसे देर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

तारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या संतान।

पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस्त है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

खोत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुन गाओ, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट जीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कहीं कोट होए पुजारी, कहीं कोट आचार व्यवहारी, कहीं कोट पै तीर्थवासी, कहीं कोट बन प्रमेय उदासी, कहीं कोट वेद के स्रोते, कहीं कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट बेस पू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना

जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के देते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

पर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जो जल में जल आए खताना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन।

नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

त्रिन समान कछ संग न जावे। बौलस कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर कांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो परा कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब यह जाने मैं किस करता, तब लग गर्व जोन में।

प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख ओठ तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण

या समाए आप उपदेश है समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप तीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसके तिन कहो किस होए स्थान समंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला

चार अष्टपदी। संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे।

नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन कोई क्या भगवान, जिस कह दिए रह।

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंगन की संकेल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उठाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिनमंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबह हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माह समाये ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी कांड हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्बै जा सब किस किसका दिया दरबै।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुंच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाट वर्ताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निर्पो हो बसे सगल व्याद मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे परवा फाद के संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए।

साचा जन्म मरे सोका चोकाचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप से आप शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे हर की पवित्र करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना धो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकफैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रह सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गए जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मन आहे एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भय एक अराज प्राशक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पादरन मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें ध्यावो। चरण कमल छो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभ की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे। गुर पूरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों पेक दर सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल।

आद पुरस्कार अंकर्तार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार्य कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बख्यान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार जात स्पावे ता श्रेष्ठ उपाय। अपने भाणे ले समाये सुनते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत करोए। जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तप का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए। सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येको नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए। किसते दूर कहा को जाए उभरे राखन हार ध्याए। निरपो जपे सकल को मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जानी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अपदी संत संग अंतर प्रगीठा नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है।
नवनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। शरण माए आकाश दयाल, सर्वलोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। कौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेल है खेल, मोल न पाई गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार तब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते हो सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का ए सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो, हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध

आस सुंदर चतुर तत्व का बेता संघर्षी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रग पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ता

जानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी।

राम नाम तन संचवै साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक। तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोई, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम खट शास्त्र

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच कू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का।

पूर्णमा पूरन प्रभ एक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जाका हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जाका होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक किरपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उरधार, सब कार्य तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले।

आई खुद नो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिनकी तीस पार लगाई गुरमुखानो।

संग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसावास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। किकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओहो जिहा बीजे तिहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए। ओए जिहा चितवें नित तिहा पाएन ओए तेहो जेहे दैव जाए। नानक दोही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देखे।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोची है ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिक मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिए ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मोह कढ़ न सके उसदा का

नित पंबल पूसे खाए, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराए, तिनकी भुख कदे ना उतरे, नित भुखा भुख कुकाही, ओना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई, कोई अग्गै कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड़ी।

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना।

चरण तोया गुर सतगुरु पिछे तर गया जो लोहा कार संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सत्य की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस्तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको पो कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पे नाई है जिन हर उठा मन माहे कोई आप तरे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिखा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने, सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता

0: था। कर कृपा सतगुरु मेली उन मुख गुरमुख नाम से आए सी, सो करे जी सतगुरु पावसी, गुरपुरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी, जिन रखन को हर आप होए होर के ती चक चक जाए सी। जन नानक नाम से आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुरु की वड्याई, हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुरु के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई, गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर तिन के सब पाप गवाई, हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच सच सच्चे की वड्याई, सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई, एहो हर रस से ही जान दे ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभु सेविया मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया, हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जप्यो हर निस्तारिया, महला तीजा, हो मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगें गवे जन नानक बोल।

निध उठ समालेन। महला चौथा, सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार, वन जारे सिख।

जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सबदू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू सा

भाए सतगुर सेती मन रता रखिया बनत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत।

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे।

पुरख विहाए सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी अंतर क्रोध जुए मतहारी कूड़ कुसत उह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

संसार है की उस्तति विच होवे एत दुख है तपा दे मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए।

मन मुख मूलो पुल्या विच लब लोभ अंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार जिते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखा नालो तुट्टी पली जिन माया मोह प्यार महला चौथा जिना अंदर दूजा पाओ है तिना गुरमुख प्रीत।

वैर करन निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो हो।

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएगा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतणी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाए सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साध

मर भी न सकें मूल, वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

है कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर खाना पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

14 अब मोहि जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारण कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जन

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पाथ काहू स्यो नाही। पत

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

होती, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौपज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पति।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित हाथे ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके। जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब

जिन राम जानिया तिन्हें पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाय मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मुन जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन पगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम तां राखे कवना। राम जपत

सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

चेतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो होए नाना, कह कबीर राम नाम पछाना।

ना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ। कौन को पुरख कौन को नारी, या तत लेहो।

आई जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छड़ाए अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर उपकार काड लीन सागर संसार चरण कमल।

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

होई, कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

गौरी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है यो जग बेद्या पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर

पाप पुन दोए बैल बिसाहे पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ये कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो मिले।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल अम

छोरे, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बिकारियो रे, कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे, तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे, गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे, मन बौरारे अंकस कहो शीश, बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पजे, मन बौरारे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गो

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब मन तावत परम बंधन पौ पागा। कहे कबीर मदन के मासे हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्व हस्ती हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुब्ध ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो तिन ही माए अटक जो उर्जे।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर इक

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता पौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै।

परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छादरे मन बहोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाये लीनो हाथ संदोरा रहाओ।

नाम पदार्थ मने बसाये, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा।

ते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध

बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

बिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो एक समाना ना।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूँ, कहूँ तक उपकार।

सस विगास संपट नहीं आवा, अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो

बल बल जे विसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग,

सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जाके जी

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कीर्तन में

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजय विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

दे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

हर त्यावें हर त्यावें तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सराम तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से पगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुझ आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तुझ आपे श्री सब गोई, जन नानक गुण गावे कर

जेवड आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बासनात, आसा मेला पहला, जे दर मांगत।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किसे देव।

तू सर्वे पूर रहा लिव लाए रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी काली नाथ क्या वडा भया किस तू पुरख जोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रहा नाल कुटम साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान, रहाओ अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो पुजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे परमल रूप उजल मोती चू गए हंस सर्व कला जगदीश।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक हर राते रह समाए, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

रहे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहा। अनत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रख नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चो।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सतनी साने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच राशी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

भूखे कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जयकार करते कीरत होए सोकर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवस है नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावन काफी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवे।

नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मनवासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेट लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल उदन करे हार साहो कजूता कणवत नानक।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। पासा मेला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहा कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित दीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तम तुम्हें जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस होगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्तूर नादं। पत विचार ज्ञान मत दंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। पासा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे। कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पाई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सदमा का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोष न होई रहा सकता सिंह मारे पै वग गए खसमे सा पुरसा।

जेको नौ आए वड्डा साद करे मन भाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाने राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर के शब्द सच्चे बैराग खट दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोक द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां तो लगै न पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख सा।

सेवड़ पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण दाओ आपे देव है सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विचुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अगम

पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बकै सब कोए, आपे बस मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एक छूं छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हिरदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ। करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्दै को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिल न पाई। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वकार।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस

जेहे कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप सदा

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहा जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाणे, आवन जान रहे फिर नाम समाणे। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा बहुपूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुरते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं ना जाए। पूरे सतगुरु दिति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बक्से साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मने आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर सियो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा से मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाये गुर विचार बिन नामे जम के बस है।

जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू करता सत्यार में दासाई

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अर्थ लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रह रहा कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में पगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग हो मैं वड ऊंचे। नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मेला चौथा। हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम रखो गुरमत मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा ले गुरमत बिगता, नाम बिना कुश्ती मोह अंधा। सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागे। नानक गुरमत नाम लिव लागे। एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पात बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन।

का जय जय करे सब कोए। आसा मेला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे।

गए आए, आते हर अपरंपर करता, हर आते बोल बुलाए, से संत तले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए, नानक आत्मा राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए।

पहला चौथा आया मरण तुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम से आए अस्थिर होई है गुर पूरे सा वास चलन जा।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया। जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्यार मेल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

गुरु प्रसाद। हम उन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुरु मोको हर नाम बताया। हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन। हम हर दिन रह न सको हूँ एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह न सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हों प्रीत लाई दूजा पाओ रिज तार, किन्हों प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा। माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई, हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे कर हल बेल री जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक के मन अंध होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन होए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते पिरकी नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुतिया त्यागी लो गारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राती तन सुहागन।

के साथ टीचर पंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तब तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आमी, देख रतन यो

अमोल वचन अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चलचीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद यो सौदा गुरमुख।

बोलो खसमाना कर मस्तक पार राखियो कर अपना क्या जाने यो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रिय संग आनंद।

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीसे, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा,

बस्तर भी पोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सब गुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्त आया, प्रभु मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

कृपा तुझ पर दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिसै तिस हर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसर मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज परवासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तर्न पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत कर।

बिस्ता अस्त रटक परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वे पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरुष सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे

जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर कातान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, संत सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुरु तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचय है भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस पर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस को लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, द्वार करत चूठी लग जाता रहाओ, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, किस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृत पाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, भगत पंडार गुरबाणी लाल, दावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तू ठै कीनो दान, नानक को गुरु दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

पूरा गुर पूरी बनत बनाए, नानक भगत मिली वड्याई। आसा मैला पंजवा, गुर कै शब्द बनावो एहो मन, गुर का दर्शन।

साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोट न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी।

तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौत संगत फज केवल नाम, संग जाम लाग पल जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसरना ही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्यवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाव पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज अनंत सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक तई अमोली, आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत्सर।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन।

आधार अर्ध करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एहो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना।

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काहू बाते आगे ठोर न पाया रहाओ किस पया निंदक बकरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जय कोई न राखे को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई आसा महला पंजवा बार तोए अंक।

कहां छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा। उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा। अजम चंडाली

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा कचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिढ़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल जुग साध संकी

अवर के जाने ज्ञाना कूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया काटिया रोग मां सुख।

महा कोरते बां पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा आसा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरो रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरो रे राव। महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सतगुरु बाणे। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुटकी, कौन अनग्रो पयोरी, महा मोनी तुद ना व्यापे, तेरा आलस कहाँ गयोरी राव। काम क्रोध अहंकार गाखरो, संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रै गिनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा अग्न बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहोरी, ऐसो समरथ वर्ण न साको, ताकि उपमा जात न कहोरी। काजर कोट में पई न कारी, निर्मल वर्ण बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। इको अंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा मैं।

प्रभ आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली हदूर चुकाने हो रा सकी सहेरी परम दया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी आन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

बहुत सिहाला सगल चरण की इहु मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला पन्नवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन।

जिनको जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभु कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

जपत है दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मेला पन्नवा, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई, रहाओ तुमरा दिया पहनो खाई, तौ प्रसाद प्रभु सुखी बनाई, मन तन अंतर तुझे त्याई, तुमरे लवे ना को उलाई, कहो नानक नित इवे त्याई, गत होवे संते लग पाई, आशा मेला पन्नवा, उठत बैठत सोवत त्याये, मार्ग चलत हरे हर गाये, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग सगले मन लखा, राव कारज काम बाट काट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन सरैन हर कीर्तन गाये, सो जम जम की वाट न पाये, आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई, आसा मेला पन्नवा, जा कै सिमरन सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास, अनद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सब सदा मनावो, रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अनदिन चीना, आसा मेला पन्नवा, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंत माने, दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्नवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

सगल सामग्री जाके सूत करोई, कट कट अंतर रया सोई, ओ पत पर लो खिन मैं करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आशा मेला पंजवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे, किलबिक बिना से दुख दर्द दूर, पै पुनीत संतन की तूर रहाओ, प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस पेटे जिस पुर संजोग, मन आनंद मंत्र गुर दिया, त्रिशन बुझी मन ने चलतिया, नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध, नानक गुरते पाई बुद्ध, आशा महला पंजवा, मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे, साध सेवा अग कटे कनेरे, सुख सहज आनंद घना, गुर सेवा ते पै मन निर्मल, हर हर हर हर नाम सुना रहाओ, बिनस्यो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा, गुर पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म इव सफल भया, कहु नानक प्रभ करी मया, आसा महला पंजवा, सत गुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण के संग चारे, जागरे मन जागन हारे, बिन हर अवर नाव सुकामा, चूठा मो मिथ्या पसारे, राव गुर की बाणी से रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा मेला पंजवा, आपे पेड़ विस्थारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पे कुए कै ओही, कट कट अंतर आपे सोई राव, आपे सूर किरण विस्थार, सोई गुपत सोई आकार, सरगुण निर्गुण था पैनाओ, दो मिल एक कै तीनो ठाओ, कहो नानक गुरु परम को खोया, अनुज रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, उकत स्यान किछु न जाना।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहु नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते राव मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू करवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण सास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आसा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद पली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम दृढ़ाया।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाता तनी अगम गुसाई।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज पुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे। ते बैरागी कहाँ समाए।

उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत। उनके संग तेरी सब विद्फाटी, उस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नानक खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

कृष्णा जय ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आरा दो दिन सरेन ए सेवा साधो कहे कृपाल गोपाल गोविंद साध संग नानक।

आई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट काट।

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा आठ पैर निकट कर।

जन्म मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कई मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विखाटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम कौ नाथ है हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे पगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ ना।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़ते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

ओ कुटुंब दिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे। अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे, कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे। आसा महला पंजवा तिप दे, ओहा प्रेम पिरी रहाओ, कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना। कारण करना कारण करना एक है सोहना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना। आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाई ओह अभय अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विधाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो

आए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के

पूरा निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह परया दीवान लेखे ना परया जिह कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, अनस्यों पोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां, अनन उपाव कर हां, तौ निकसै शरण पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रियो समसर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

धन्यवाद। एक का ओट गहो हा, गुर का शब्द कहो हा, आज्ञा सत सहो हा, मन है निधान लहो हा, सुख है समाये मेरे।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा। नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जागया हा, नानक बड़ पा गया।

छत्तीस सुजय हाँ पतित उधार ले हो हाँ नानक अरदास ते हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक टुका।

हर नाम जिन लय, हर तज अन लगे हां, जन्मे मर पगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल हुए हां, नानक भगत सोए।

अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुरवी चारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावे।

किस नेड़े किस आखा दूर, निद गुण गावा देखा दूर, अंतर बार अवर न कोए, ज्योतिष पावे सो फुन होए। सुन थर थर नानक।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहे आ जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाल गुर सुख दाता अवरना पाल हालत पलत निभी तुझ नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सांच अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सोपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द

बैठे सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई इहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे इहो मन राजा सूर संग्राम इहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वश किए हों मैं ग्रास इकत खाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ कनिक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिसको बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरु

अवर्णा औषध तंत्र न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरुमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवे थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद न पाए।

तिन गल सिलका पाया टुटन मोक्षरिया तन जोबन दोई वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूतानों फुरमाया।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठाते, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हरमा।

आई ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस्त चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी छकुरानी इकना पेरण सिर खुर पाटे।

सुनाइए दुख सुख तेरे पाने होवे किस थे जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो, पावा पा

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे, गुर ते दर कर जानी है।

जय गुरमुख नाम तियाए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बनियाई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिए, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

निकाले, दुर्मुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जम्मण मरना आखी है तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, सारी कार कमावनी तुर्की फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

पर खाए, गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे पर माई।

जिस आकर आए नानक सिर दे छूटिया दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाग सतगुर मिले पाईए पग निर्वाणी।

साहिब से मन मानिया दे साच आधार एनिस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुकुम।

ले अग्न जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पहचान सी, सत संत

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए, नानक साच कह विचार, हर का नाम रख।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मा...

गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नावे सब फिरे बोराणी। तीन पवन में एक काम आया, मूरख पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। अमृत मीठा शब्द विचार, अंधिन पोगे हूँ मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार। हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूँ मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परख सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिए मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले जान नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सब

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पन।

हंसोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जो आई कर दर छोड़े अपना पर कर चूक।

पर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा। गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई। गुरमती कर चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा। अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई। नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई। नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई। जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई। नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किछ नाम है।

बोले नान वे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवत आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

मेल लहें इक दरगे मार कडे कूड़ियार इक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उत्वताए नदर करे जिस अपनी किसनो पामनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सच नाम व पार जो इतला है लायन।

एटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवे निज पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखुआयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत ना हो वही ना सुख वही शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

भगता की जत पत एको नाम है, आपे ले सवार सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार सार।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नीचल हर को नाओ, कर मित्राई साध च्यों नीचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद।

दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए इहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हो आसो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दा।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

तन पिरे मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिर के सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कंपै ना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संता की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निद पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर

भगत पाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे।

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा, तह तह हर तेरे नाले, मन से आणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, मां बिखम जम पंस दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिए।

जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुरु पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई परम चूका आमन जान जियो आमन जाना परम को पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सिखाई गुर सबदी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया से तन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगे पग साधु मन चूका सोग विजोग जियो जिन हर मीठ लग

भी कान उपाय जियो। कल युग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर

हम जाते हर बहा प्रभु पकड़ाए दियो, प्रभु बहा पकड़ाई उत्तम भक्त पाई, गुरु चरणी जन लागा, हर हर नाम जपिया आराध्या, मुख मस्तक भाग सवागा, जन नानक हर कृपा धारी, मन हर हर मीठा लाए दियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद लेवो सब सुभाए दियो। आशा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

रसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस घटा पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई, हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे, हर नामे ते सुख पाया। जन्म मरण दोवे दुख में ते, हर रामे नाम समाया। हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखा

संत्र दृढ़ाए हर रस के रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बाहुड़ मरण ना होई हर हर नाम अमर।

हर हर नाम चिताए गुरु, हर मार्ग चाली, मेरे मन तन नाम आधार है, हौं मैं बिच जाली, जन नानक सतगुरु।

आगा समेला तन्यमा छंत कर पहला अनदो अनद घना मैं सो प्रवडी था राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या।

महाराज सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़ पागी सत्संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरुष विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हो मैं बिनसी गाठे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबूते प्यारा राम राजे। सबूते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा आशा महला पंजा।

जम पंथ पणी है तै साध संग ना डरती है। कर कीरत गोविंद गुणी है सगल प्राचत दुख हरे, कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो, जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी, मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा, कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चित वे आस पणी कर दिनियर देखिए, कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया, अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है, कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय, जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाले दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने, फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे, कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे, नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत। जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना, कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते, दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार, चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाक, गुपत प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात, पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए सांग साथ। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा, सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी, तिहो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरनी। आसा महला पंजवा श्लोक, उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए, पेटत साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी, सास सास आराद हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए, नानक प्रेम पे चरण जम पे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम निरंजना, परम अंधेर विनाश ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल छल मैयल पूरिया, इक निमुख जा कह हृदय वस्या।

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गे हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का के अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जम पाल नानक मन तम सुखी होए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरुष पते भगवान ताकि शरण गही
निरपो पै प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंदक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रया, कट कट वासी आप विरले किने लया, जय कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक राव रया।

प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे। आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत। पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभु सरना ही खिनो। तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुण गुपत अपार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने, बिन हंस नानक रंग रात।

सर से हर नाम रह से प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

मैं अंत जाई पाया, बिन वंश नानक सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया। नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत तय पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंश नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नानक।

सी साथ है। संग देखे करणहारा काए पाप कमाइए, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पद न संगे कुल समूह तारी है। सिद्ध साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिए प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, कूड़ कपट कमाऊं गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कट

कमलाप्रम पीत कमलाप्रम पीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खात दिन खात जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ न गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी सुज बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रे बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अलपीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमह संता।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा सेज सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य असराज है की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह ना सत्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाव ना पाए कूड़ यार मौका ले दो जुक चालिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बर्फ बर्फ, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़े आते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किछ खाए न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे से ते ने केवल, हों मैं सबद जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताऊ दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे, श्लोक महला पहला। कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनन हार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूप।

सब जग चलनहार, पूर मिठा पूर माथो पूर डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो पूर महला पहला। सब तां पर जानिए जार दैस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तां पर जानिए जां पर तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है तां पाए मोख द्वार। सब तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सब तां पर जानिए जां सिख सकीले, दया जाने जी की किछ कुन दान करे।

तू पाप कड्ढे कोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, पूरा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखिया ता तोड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी से

मूर्त होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक पगती जेर पै पूरे सोए न कोई मेला पहला लब पाप दो राजा मेहता कूर हो आशिकदार काम लेव सब पुछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन ते आया ए ना जनता के वश किछ नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा।

गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठ है साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहि निरासे कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए तारका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिलकूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावै विन सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राह पीड़े अग्गे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तक कपाहो कतिए बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुतिए पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई तग ना टूटे सपूत। महला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना तैरी तग ना थी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत्तै वर्तागे अवरागतै ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गो ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाय तोती टिक्का तय जप माली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे करंदा। महला पहला। मानस खाने करे निवाज छुरी वगाए तिन गलताग तिन

आण ना सके रास, जे एक अर्चंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी, चाकर लग गए चाकरी जे चल खसमे पाए, हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गुआए अगला मुँह।

परमा साहिब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार ना।

रहे अब मन सुन ना लूके आता पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न चूके कहीं ना उपजे उपजी जाने पाव अपाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीना ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण परंपादा तो मन सुन समाना आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग ऐसे संत ना मौके पावे डाला सो के दागट कावे रहाओ बासन मांझ चरावे।

है पूत तेरा तू बाप मेरा, एक है ठाहर दुहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बुझिया, गुर प्रसाद में सब किस सूझिया, आशा इकत पत्तर पर उरकट कुरकट, इकत पत्तर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठंगन बाबा दू, किन्हें विवेकी काटी तू, राव सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्केरी, हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओह हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे, नाको काटी कानो काटी काट तू।

छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक कोज से द्वारा नवे खंड की पृथ्वी।

आए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखाने, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जाने रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे बौरे तुम करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म होत है।

रे एक चुके संत सुन अंग अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया हर का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई सहज बिलोव जैसे तकना जाए रहा तन कर मटकी मन माए बिलोई इस मटकी में सब संजोई हर का बिलोव ना मन का विचारा गुरु पर साथ पावे।

कूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता, बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी तंत न बजे रबाब, फूल बिगारे हो अपना।

का सार होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुगद फिरे। चरण शीस पर कंपन लागे नैनी नीर असार बह। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए।

खान करारा और खवादना की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताल, काहू ब्याद लगाई। सू में तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर दंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की। माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा। जगन नगर एक बूंद न बरखे।

साखी शब्द सुरत नहीं उपज खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता था के पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यों पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण कर खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया नवाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, वैसंतर जाके कपड़े तोई, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कटू जाई। कह कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला

की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरह जरोरे मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो किन बिद रहन रहो रे से जय रमत नैन नहीं पेखो यो दुख कासो कहो रे रहाओ बाप साव का करे लड़ाई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया आशा हम कर सूत तने नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जे बा विष्णु नैन नारायण हृदय बसे गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हूँ न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुझो मोर गियाना तुम तो जाचे कूपत राज।

मेरे अब खून रूप न होई, ताजा तन साज सब खाता, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सब पूत ए कह कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मना।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर।

एक तुका कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई हर मेरो फिर हम हर की बहुरिया राम बड़े मैं

गुप्त हीरा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह पे बुरी अब की स्वरूप।

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तो है जिन लागे कुंगत कादे की यह बढ़ाई दिन दस पांच।

कह कांसी मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कठी राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना। लोक कती ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हारम बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से तिरावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक।

माला ठाकुर की हो पूज करो, पहले बास लई है पवरे बीथल पहला काय करो। आमी ले दूध रिदाई ले चीरंग, ठाकुर को नैवेद्य

मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ, रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी न जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम पे आवो, सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा, आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान मांडे, काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना, रहाओ सिंगच पोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने, नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अदद लागे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत ना तेरो जन प्रेम की देवरी बांधियो तेरो जन कह रविदास सूत गो कमन गुन आशा। हर हर हर हर हर हर हरे हर सुमृत जन जय निस्तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागरे।

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म भगता में गनिया।

रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगै जाए। ऐसा सतगुर सेवियै मना जित सेवियै, गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहरै जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया, तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई, जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला की जा। हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत हो सखाई। हर दिन होर रास पूरी है चलदिया नाल न जाई, हर मेरा

दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

अंत गया पछताए। त्यो मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अब तक तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुरु मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाणे सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस

संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पादहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याय सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मो को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पादहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काज कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। हो दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सबास।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे पाई रे मोको कोई आय मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम हर सो चित लावे अमृत बचन सतगुरु की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौशन बंद हर कर दिए हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभु पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें।

तू पाए कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

हारी अंकर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। असत मज्जन कर स्नाना ब्रह्म आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परदासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्य हर खोका खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला। नानक दास उन

सहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिदास। होए

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त कबीर हाओ, इष्ट मीत बंदब सुत पाई।

निदान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, भय कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे, रहाओ।

आपे भगता आप स्वामी आपन संग रखा नानक को प्रभु पूर रहो है तेचो जतर कथा गुजरी मेला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो प्रभु को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लड़ायो रहाओ जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो संग परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाय त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह के संगे एक मोयो मन लीला रहाओ जिस सिमरते मन होत आनंदा

आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनस्यो सगल निहोरा। गुजरी मैला पंजवा, आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से ती रंग लाए, मन को

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिद माह समाये तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सल

कमल संगराच सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करके तू प्रभु प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याज सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुर पूरे की वडियाई अब चलनी करी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई। गुजरी मेला पंजवा कबहू हर सो चीत ना लायो।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के दुख गनिए महामोनि खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

सब रवे आसोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम अगम दयाल प्रभ

साध संग उधार एहु मन आप पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनग्रहो आप राखे पै पूरन काम साथ सास ना बिसर कबू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना त्याब खाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते

तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, जपिन तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी, वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे, दुर्मत बुद्ध त्यागी, आठ

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

बित तज अमृत पी आया, गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचे प्रभु दाते, ताके अंत न परे सुमार। जैसी पूख होए अब अंतर, तू समरथ सच दे।

अरे जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभु नायक दिन दे तोट नाही पंडार। ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार।

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाए। है जी काल सदा सिर ऊपर।

तोग बिजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

मिलाई पौधी सदा दयाल दया कर रहा गुरमते प्रमन चुकाई पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की बढ़ियाई हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं ते पाए

फिर राख है सो मुक्त हो वे जो इच्छी सोई फल पाई। नाच रे मन गुर के आगे गुर के पाने नाचे ता सुख पावे।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अंदिन जप

हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत किंचे एक अंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पावे।

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गल हो रहा निक्षा क्यों कर जाए।

मुक्त द्वारा अतनी का नाना होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हौ मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यों चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे हा जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जी रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटिया आए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुरु प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोय सुख न पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी।

सुख विचों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाहिए हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएं दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाहो वाहो करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर नामनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुरु मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिए।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना होवई ना ओए दुख सहाए, नानक गुरुमुख उबरे।

तार, टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वड्याईयां दर

जिसनो आपे बख्शे करतार महला तीजा सदा सदा साला ही है सच्चे को बल जाओ नानक एक छोर दूजे लगे साजेवा जल जाओ पौड़ी अंसा।

तैया तिथे सोग विजोग ना व्यापे अस्थिर जगतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप प्रवान नानक जे को आप गणाएदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी किस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरिया तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी।

अकुल निरंजन पुरुष अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएं वाज, नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएं बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याएं इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए, कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है, जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा। चंग्याई आलक करे बुर्याई होए शेर, नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा। कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित, नानक तै सह ककिया मन में सच्चा मित। पौड़ी। हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया, नवनिद पाई राज जीवा बोलिया, अमृत नाम निधान दासा कर कणा, तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना, कमावा तिनकी कार शरीर पवित्र होए, पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए, आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है, मोहि निर्गुण दिचै थाओ संत तरमसाली है। श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव।

जब त्या पहुँच न सके कोई तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाई है। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताई है। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे विघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सब आया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छियां फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लद्दम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दित्ती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा देव सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान।

महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अनदिन बिलपते ज्यो सुंजे कर काव पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया, इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया। पाया नाम निधान जिसनो पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा। सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहा मर। साहेब सेवक इक इक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा प्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लक के कप ज्यों

मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेई, तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु मिले

मले ना लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परिया।

अवर ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्प

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंदाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काए जपोरे काए तपोरे काए बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काए कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काए फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्नमिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पास सुभागे।

में बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही पूर्यारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नक्ती। ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाहीं हर स्वामी तिल बिगड़ रूप बेरक्ती। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाये प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याये रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाये। काट अब घट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाइए। पुस्तक करें सेवक मुन के ते तेरा अंत ना कतहूं पाइए। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए। देव गंधारी माई होन हार सो होई है राज रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोइए रहो। कह फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोइए। कब मुँह मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साध सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत मेर तेर तजो अभिमाना। शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो। नाही ना का बोल करत निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते। बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता।

मन हर कीरत कर सबहू, दावत सुनत जपत उधारे, वर्ण अवर्ण सबहू रहाओ, जैसे उपजियो तही समायो, ए विद जानी तबहू।

तेरे पूरे मनोरथ साध संग तद लभूं देव गुणारी मन जो अपने प्रभावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो।

देव गुणारी मन सगल सियानत रही, कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ, आप नेक पे शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप खापन हारे कुदरत की न कही। देव गुणारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते। महा किलबित कोट दोत रोगा प्रभु दृष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते। देव गंडारी पंजवा सो प्रभु जत पत पेक्षो नैनी, सुखदाई जीवन को दाता अमृत जाकी बैनी रहाओ, अज्ञान अंधेरा संति काटिया जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी। तरम तरम किस उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियानक संजम नानक लागो गुर की चरणी। देव गुंडारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ, खोजत खोजत खोज बिचारो हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा, सुंदर सुगर स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा। देव नारी महला पंजवा मन कह अंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशे सोचारा रहा, जिनकी आत सिमर प्राणी जियो प्राण जिन सारा, तिसे त्याग अवर लपकावे मर जन में मुग्ध गवारा, अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा, करण करावन हार समरता क्या नानक जंत बिचारा। देव गंडारी महला पंजवा सो प्रभ नेरे हूते नेरे, सिमरते आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ, उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रे, करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे, अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रे, नाम आधार जी जय नानक को अंग सूख कने रे। छके दूजा देव गंडारी महला पंजवा मन गुर मिल नाम अराजयो, सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधियो रहाओ, कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फांदियो, पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधियो, पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो, बलिहारे नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो। देव गंडारी महला पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ, सुंदर सुगर सूर सो बेता जो साधु संग पावे, ना उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नी पावे, पूरन ब्रह्म रविया मन तन में आम न दृष्टि आवे, नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे। देव गंडारी महला पंजवा चंचल सुपने ही उर्जायो, इतनी न बूझे कबू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ, कुसम रंग संग रत रचिया बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सुख कर माने देव कहाँ उठतायो, फिर्त बहुत श्रम पायो संत दुआरे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंडारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे करना रहाओ, पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना, बिकसे मन होवे प्रगासा बहुर न गर्वे परना, सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना, पयो कृपाल ठाकुर नानक को पर्यो साध की सरना। देव गंडारी महला पंजवा
अपने हर पै विनती कही है। चार पदार्थ अनद मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ। मांग त्याग हर चरणी लागो तिस प्रभ अंचल गही है। आँस न लागे अग्न सागर के सर्व स्वामी की अही है। कोट पराध महा अकीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है। करुणा में पूरन परमेश्वर नानक तिस शरण ही है। देव गुंदारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा। रोग शोक सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ। जन्म जन्म के किल विनाशे कोट मजन स्नाना। नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना। कह कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे। जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे। छके तीजा देव गंदारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो। करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो। साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो। सबसे नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो। गुण गावे ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो। नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा। सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा। दीना नाश प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा।

देवदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता राव बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवो तब

करने हारे देव गंधारी महला पंजवा। प्रभु यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजै कर संतन का चेरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अंग नानक एह लही है राग देव धंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कथु जाए अनक अनक पांच बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर पाग सोग द्वारे अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रिय थीते सब थाए देव गंधारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आछे आयो पयो नानक गुरचरनी।

कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल विसारे। देव गंधारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारो। प्रभ गुण गाए बिखे बन करया।

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनकित पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार।

कहते थारो हो कर कतराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंश कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग न छुटकी रे।

कृपाल कृपा निज मेरा मुख साकत संग न जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलसी रे। राज देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हो बल बल।

मन नेक ना कहो करे सीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत से ना डरे रहो मद माया के कहो बावरो हर जस ने उचरे तर पर पंसे जगत को ढके।

मात पिता पाई सुत बंदत अर्पुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरे को प्रेत पुकार आज घरी को न रखे।

देवगंधारी महिला नावा। जगत में चूठी देखी प्रीत अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या नीत रहा, मेरो मेरो समय कैक है, हिस्सों बांधो चीत, अंतकाल संगी नह को ए अचरज है रीत। मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारो नीत, नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पंजवा।

मन सिंधियाला फल पाया, हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम। गुरमुख मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़ी, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सह

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कमल।

हर अमृत दिख ले जाए राम मन सुखा हया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम से आए राम हर साग बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन भेदया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुखी रे राम हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी जो चात्रिक जल बिन तेरे राम सतगुर सने जाय पाओ मेरी जिंदड़ी गुण दसे हर प्रभ तेरे राम जन नाम हर मिलाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिक बांधे हो मैं

गुर सतगुर मीत लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर सब लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चो

अति उत्तम हर नाम है मेरी जिंदगी जित जपिया पाप गवाचे राम। अति उत्तम हर नाम है मेरी जिंदगी जित जपिया पाप गवाचे राम। पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदगी चहु कुंडी चहु जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदगी हर अमृत हर शरणाते राम।

हाँ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम। नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए, सब दुख निवारण हारो राम। सारसना तंग

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

कवन रसना गुण पना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुरु।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत।

साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीचे, कल्याण में प्रगट भए, सुजा सुहावी।

मन पर कीट न आया सहज न लगो पाओ शब्द साज न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आप न पछाने मूड़ा अवरा आप दुखाए मुंडे दी खसलत ना गया अंगे विचड़ चोटा खाए सतगुर के पै पन ना करियो रहे अंक समाए। अनदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब कुछ देखे किसे का जिनकी आतन साध नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे

कहे कथे न पाए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृत्ति आपे अकथ कटी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तह के तेरे तैरच निर पौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, बिख मार

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन। जन नानक सालाहे ना रजै, तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही, मर जमे आवे जाहे। बिन सतगुर सेवे सिक्का बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर से

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे है, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे।

आप ब्रह्म आप राज लया आपके मारे आपके छोड़े आपके बख्शे करे दया आप अपुल न फुले कभी सब सच कपाव से सच किया आपके जिना बुझाए गुरमुख इन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सुमरे।

लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्र लदिया हर नाम तन तेरी। सब तिसेनो सालायो संतो जिन दूजे पा

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पाल।

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाओ सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्म।

प्राप्त होए। इस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

एक को सच वर्त है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सच संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान गुरुमुख मन

ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड्डा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच भगत ना हो वई, हुक्म ना बुझिया जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ

कर फिर पावा तेरे अनेक प्यारे हो फिर चित नावा जिन फिर रावया सापली सुहागण से मैं गुण नाही हो क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा फिर रावे मैं कर्महीन तब ही गल लावे तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा मैं निर्गुण बस नान

मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए पुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का

तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर तेती रलिया वडहंस महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अस ऊंचा ता

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन परदा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौं बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे शरण परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे न कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना।

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे जे सो खेल खिलाये बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हों एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हों क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरसा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुन सच शब्द विचारा अंदिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा हुए।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहा

नित चढ़े सवाया, एक करम करम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे।

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंदा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे। सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया। हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो।

गुरमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम, आंदिन नाम वखाणी है लाहा, हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजे हर रावी जय, आंदिन नाम वखाणे, गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपे आप पछाणे, गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चे शब्द रस पीजे, नानक हर की भगत निराली, गुरमुख विरले कीजे, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजे शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा हर नाम से आए, मन वसाए बूजे गुर विचारा, मन मुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा पुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चे शब्द सुहाए, हर वापार से जन लागे, जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या, सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साच रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना, सब दे हो मैं मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे, गुरुमुख नाम सुहागो, नानक शब्द मिले पौ पंजन, हर रावे मस्तक पागो, खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम, गुरमति हुक्म बूझिए, हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच सवारण हारा, पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन, अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई, स्वधंस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे, कोहे ना सके जम काल जियो, काल जाल जम जोहे न साके, साचे शब्द लिव लाए, सदा सच रता मन निर्मल,

सब दुख है खोटा एहो अपारा राम। कूड़ बोल बिख खावणी बहु वधै विकारा राम। बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावै पत कोई। पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाणे बिन।

फिर होए ना फेरा अंत सच नवेड़ा गुरुमुख मिले वड़ियाई साचे रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के, पज पे हर शरणाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर न दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हौ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवान। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुर सिख ली प्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर भी

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम शास्त्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया हरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सफलो किया करता है हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया, जन नानक।

ठाकुर माने सो प्रधाने हर सूची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

जन साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन कन्हैया वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख लेहो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

काट काट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे, अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा, आप उपाय आप

ते वडहंस है सच नाम उधार सत संग्रह है सद सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर चीची करतार नानक हों।

कर्मी मारी सांप ना मरे है, क्यों निगुरे कर्म कमाए, सतगुरु दाता सेवी है, शब्द वसै मन आए, मन तन शीतल शांत हुए, तृष्णा अग्नि बुझाए, सुखा सिरे सदा सुख होए।